वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु सवारी गुरु रूप साध संत जीओ, संध्या का टाइम, हर साहब जी के पाठ प्रारंभ होने लगे हैं जी। आओ सारे रल के सतगुरु जी के पवित्र पावन हजूर में हाजरी लाइए, हर साहब का पाठ सरवण करिए जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, रहरास साहिब हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राम।

साचा साची नाई है पी होसी जाय न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाते कर कर जिन सी माया जिन उपाय कर कर देखा कीता अपना ज्योत सिदी वड्याई ज्योत से पावे सोई कर सी फिर हुक्म न करना जाई सो पात साहो साहा पत साहिब नानक रहन रजाई। आसा महला पहला।

करतारा प्रजा तरत तब दे अपारा जब आकर्क करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तार सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे आप अपनी बूझो चारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको पेव न पावत वेदा।

दया सिंध कृपा निध रूहानियत ते भंडार गुरु गरीब निवाज जुग हो जुग अटल दसां पातशाहियां दी जगदी जोत समर्थ गुरु आदि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आदि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी छत्र छाया हेठ हजूरी अंदर गुरु की साजी अते निवाजी होई गुरु प्यारी गुरु सवारी अति सत्कार योग साध संगत जी सर्वत्र माई भाई गुरसिख बहुत वड्डियां भागां वाले ने गुरु दरबार विच हाजरी भर के सतगुरु जी दी अमृत बाणी सरवण करके जीवन दे लाहे प्राप्त करदे ने। कुरबान जाई ओस वेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया धन सो वेला घड़ी धन धन मूरत पल सार धन सो दिन स संजोगड़ा जित डिठा गोर दरसार ओ दिहाड़े ओ घड़ियां सफल हो जांदियां ने जिन्हां घड़ियां द्वारे गुरु संगत विच बैठ के गुरु गुरु दे जाप नूं जपिया जावे। तिस गुर कौ सिमरो सास सास गुर मेरे प्राण सतगुर मेरी रास गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर के चरण धोए धोए पीवा गुर की रीण नित मज्जन कराओ जन्म जन्म की होमै मल हरो तिस गुर कौ चोलावो पाखा महा अगण ते हाथ दे राखा तिस गुर कै गृह ढोवो पाणी जिस गुर ते अकल गत जानी तिस गुर कै गृह पीसो नीत जिस प्रसाद वैरी सब मीत जिन गुर मौको दीना जियो अपना दासरा अपे मुल लियो अपे लायो वाहिगुरु जी अपना प्यार फिर अर्ज करा अपे लायो अपना प्यार फिर अर्ज करा अपे लायो अपना प्यार सदा सदा तिस गुर कौ करी नमस्कार कल कलेश पै परम दुख लाथा कहो नानक मेरा गुर समरथ समरथ गुरु दी हजूरी अंदर सज बैठे हो मोलक स्वासा नु सफल करन वास्ते अमृत बाणी दी दात प्राप्त होई है गुरु के कीर्तनिया ने गुरु सवारी संगत जी बहुत ही प्यार विच अमृत बाणी दा कीर्तन आप जीया नू सरवण करवाया है। आप जी ने कन्ना रूपी डोनिया नाल अमृत बाणी नू छकना कीता भाव के आनंद प्राप्त होया है। गुरु कृपा है सारंग दी वार जड़ी है समाप्त हो चुकी सी परसों रोज जो बीत चुका है अज मलार राग दी वार जड़ी है परा आरंभ होण लगी है। धन गुरु नानक देव महाराज जी अपार कृपा करदे ने आओ अज दे अमृत वचना नाल गुरु सवारी संगत जी सांझ करन

तूरे अंतर जामे पुरख विदाते सरदा मन के पूरे नानक दास है सुख मांगे मुख कर संतन के तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।

बोलना जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। तीने तप निवारण हारा दुखनता सुख रास, ताको विघन न को लागे जा की तपा गै अरदास। अरदास एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय वाह श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासें हुई सहाये। अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे घर नौ नि आवे ताए, सब थाई हुई सहाये। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, सब थाई हुई सहाये। दसा पातशाहियां दी जोत, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दी दार दा ध्यान करके बोलो जी। हे निमाणियां दे माण, निताणियां दे ताण, नियोटियां दी ओट, सच्चे पिता धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ। आप जी का कोटान कोट धन्नवाद है पातशाह जीओ। आप जी ने अमृत वेले तो खुले दर्शन दी दारी बख्श के निहाल कीता है जी। इस वेले दीवाना की संपूर्णता तो उपरंत आप जी के स्वरूप के सुख आसन की सेवा हुई है। सोहेले साहब जी के पाठ हुए हैं पातशाह जीओ। बाणी पढ़द्या तो सेवा करद्या तो आप जी की हजूरी विच विचरद्या तो हुई गलतियां भुलों की मुआफी बख्शनी। अगे वास्ते समत बख्शिश करनी, बाणी का भाव दर आईया संगतां दे हिरदिया ते वसाउणा। दर आई संगत की हाजरी, तिल फुल भेटा दर प्रवान करने, अपने दरों घरों गुरसिखी जीवन नाम बाणी सिमरन की दात बख्शिश करनी। तंदुरुस्तियां बख्शनिया, किरत कमाइया च बरकतां पाउणियां, अपने लाई रखना पातशाह जीओ। चार पहर दिन आप जी दे पाणी विच सुख नाल बतीत होया है, चार पहर रहण आप जी अपने पाणी विच बतीत करवाउणा। इस वेले आप जी का सुख आसन तैयार है, आप अपने आसन ते विराजमान होवो। सेवकां नूं संगतां नूं खुशियां बख्शो। अमृत वेले खुले दर्शन दीदारे बख्श के निहाल करना, अमृत वेले का जागना बख्शिश करना। सही प्यारे मिलना, जिन्हां मिले आप जी का नाम चेत आवे, नानक नाम चढ़दी कला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

कल कलेश तन माहे मिटावो, सिमरौ जास विसंबर एकै, नाम जपत अगंत अनेकै, भेद प्राण सिमरत सुदाखिर, कीने राम नाम एक आखिर।

प्रभु कै सिमरन कार्य पूरे, प्रभु कै सिमरन कबहू ना चूरे, प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सहज समानी, प्रभु कै सिमरन निश्चल आसन, प्रभु कै सिमरन कमल बिगासन, प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभु सिमरन कांत न पार, सिमरह से जन जिनको प्रभ मया, नानक तिन जन सरनी पया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग भेद उपाए, हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौंकुंट जाते, हर सिमरन

संगी हो मैं चूरे। जे को जन्म मरण ते डरे साजना की सरनी परे। जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जासा। सगल पुरख मैं पुरख प्रधान शासन जाका मिटे अभिमान। आपस को जो जाने नीचा सो गणिये सब ते उच्चा। जाका मन हुए सगल कीरीना हर हर नाम तिन कट कट चीना। मने अपने ते बुरा मिटाना पेखे सगल श्रेष्ठ साजना। सुख दुख जन सम दृष्टेता नानक पाप नहीं लेपा। निर धन को धन तेरू नाओ नितावे कौ नाओ तेरा थाओ। निमाने कौ प्रभु तेरु मान सगल कटा कौ दे बहुदान। कर्ण करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी। अपनी गत मित जान हूँ आपे अपन संगा प्रभराते। तुमरी उस्त तुम ते हुए नान कवर न जान सकोए। सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर को नाम। जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया। सासंग दुर्मत मल हिरया सगल उद्दम में उद्दम भला। हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी में अमृत बानी। हर को जसन रसन बखानी।

तीजन सहज समात सुन अंधा कैसी मार्ग पावै कर गय लिहूड़ निभावै कहां बुझारत बुझै डूरा निष्कहिए तू समझै पूरा कहां विष्णु पद गावै गुंग जतन करै तो पी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तू हां उस गवन करतार करुणा मैं दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाई सुआवै न चीत जो बैराई ता सुप्रीत बलुआ के गृह भीतर बसै अनंद केल माया रंग रसै दृढ़ कर्मान मने प्रतीत काल न आवै मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोभ द्रोह याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लियो अपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पहे अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता अम्बारिक तेरे तुमरी कृपा मैं सूख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत उच्चे ते उच्चा भगवंत सगल समग्री तुमरै सूत्र धारी तुम ते होए सुआग्याकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी शलोक देन हार प्रभ छोड़ कै लागै आन सुवाए नानक न सीजै बिना वै पत जाय अष्टपदी दस वस्तुले पाछै पावै एक वस्तु कारण विखोट गवावै एक भी ना दे दस भी हिरले तो मूढ़ा कहो कहा करे जिस ठाकुर से ना ही चारा ताको की जय सद नमस्कारा जाके मन लागा प्रमीठा सर्व सुख ताहू मन उठा जिस जने अपना हुक्म मनाया सर्व तोग नानक तिन पाया अगंत साव अपनी दे रास खात पीत वरतै अनद उलास अपनी अमान कछ बहुर साहु ले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवै बहुर उसका विश्वास न होवै जिसकी बस किसे आज्ञा राखै प्रभु की आज्ञा मन मत है उसते चौगुन करै निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनिक भांत माया के हेत सर पर होत जान अनेत बिर की छाया सो रंग लावै ओ बिन सह मन पुछतावै जो दिसै सो चालन हार लपट रहो ते अंध अंधार बटाऊ स्यों जो लावै नेहि ताको हाथ न आवै के मन हर के नाम की प्री सुखदाई कर कृपा नान काप ले लाई मिथ्या तन तन कुटम सबाया मिथ्या हों मैं ममता माया मिथ्या राजोवन धन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती अस्तु वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पीक हस्ता मिथ्या त्रो मोह अभिमान मिथ्या पशु पर कर्त गुमान स्थिर भग साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है मिथ्या हस्त पर दर्व को हिर है मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार को ताव है मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बात लेत विकारा बिन बूझे मिथ्या सब पय सफल दे नानक हर हर नाम लय बिरति साकत की यार जा साच बिना कहूत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुखावता कै दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन वृथा बिहाए मेघ बिना ज्यो खेती जाए गोबिंद भजन बिन वृथे सब काम जो कृपन के निरार्थ दाम तन तन ते जन जे कट बस्यो हर नाओ नानक ता कै बल बल जाओ रह तवर कशवर कमावत मनि प्रीत मुखो गंडलावत जन नहार प्रभु प्रवीन बाहर भेद न काहू भीन अवर उपदेश आप न करै आवत जावत जन्म मरै जिसके अंतर बसै निरंकार तिसकी सीत तरै संसार जो तुम भाने तिन प्रभ जाता नान कुंजन चरण पराता करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आप है मान आप है आप करत नबेरा किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा उपाव सियान सगल ते रहत सब कछ जाने आत्म की रहत जिस पावै तिस लै लड़ लाए तांत नंतर रहा सुमाए
सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जप नानक हरी श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहंग मेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव हस्तपदी जे प्रसाद छत्ती अमृत खाहे तिस ठाकुर कौ रख मनवाहे जे प्रसाद सुगंध तन लावै तिसको सिमरत परम गत पावै जे प्रसाद वसै सुख मंदर तिसै त्याय सदा मने अंदर हे प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याय त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसै त्या कतवर लुभावै जे प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पहर ताका जस गा विजय जे प्रसाद तु सब को मन मुखता को जस रसन बखाने जे प्रसाद तिरु रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जप दर गय मान पावै नानक पत छेती कर जावै जे प्रसाद आरोकन चंदेही लिब लावो तिस राम स्नेही जे प्रसाद तेरा उला रहत मन सुख पावै हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरनी पार ठाकुर प्रवता कह जे प्रसाद तुझको न पहुँचै मन साथ साथ सिमरो प्रभु उच्चे जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ता की भगत करे जे प्रसाद आपूखन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद अशुभ हस्त सवारी मन ते प्रभु को कबू न बिसारी जे प्रसाद बाग मिलक तना राख प्रो प्रभु अपने मना जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठत सत सहते आई तिसह त्याई जो एक अलख इहां उहां नानक तेरी रखै जे प्रसाद करह पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को साथ साथ चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमर सदा अनूप जे प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत रह गुर प्रसाद नानक जस कह जे प्रसाद सुनह करन नाद जे प्रसाद पिख विस्माद जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सह जे बसना जे प्रसाद हस्त कर चल है जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद परम गत पाव है जे प्रसाद सुख सह सुमाव है सब प्रभु त्याग बरकत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभु को मूल न मनो विसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तुता कौ जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसै जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावै साच रे मन मेरे तूता सिवराच जे प्रसाद सबकी गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सुहर गुण गाओ प्रभ कृपा ते हुए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभ सुप्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए सर्व निदान प्रभ तेरी मया पू कछु न किन्हू लया जित जित लाभो तित लगै हर नाथ नानक इनकै कछु नहाथ श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुखता हुए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचर्ज कथा सुबदी साध कै संग खूजल होत साध संग मिल सगली खोत साध कै संग मिटै अभिमान साध कै संग प्रगटै सुग्यान साध कै संग बुझै प्रभ नीरा साध संग सब होत नबेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरने कौन प्राणी नानक साध की शोभा ब्रह्मा है समानी साध के संग अगोचर मिले साध के संग सदा प्रफुल्ले साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस कुंचा साध संग सब की रेन साध के संग मनोहर बैन
साधक संग न कतु तावै साध संग स्थित मन पावै साधक संग माया ते भिन्नु साध संग नानक प्रभु सुप्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग महापुनीत साध संग किस्यो नहि बैर साधक संग न बीगा पैर साधक संग न ही कुमंदा साध संग जाने परमानंदा साधक संग न ही हो तापु साधक संग तजै सब आप आपे जाने साध बुढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई साधक संग न कबहू तावै साधक संग सदा सुख पावै साध संग दस्ता गोचर लह साधु कै संग हजार सह साधक संग वसै थान उचै साधु कै संग महल पहुचै साधक संग दिड़ै सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म साधक संग पाए नाम निधानु नानक साधु कै कुर्बानु साधक संग सब कुल उदारै साध संग साजन मीत कुटम निस्तारै साधु कै संग सो धन पावै जिस धन ते सब को वरसावै साध संग धर्म राय कर सेवा साधक संग शोभा सुरदेवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग मृत गुण गायन साधक संग सब थान गम नानक साधक संग सकल जनम साधक संग नहीं कछ काल दर्शन भेट तो होत निहाल साधक संग कलुखत हरै साधक संग नरक पर हरै साधक संग यहाँ उहाँ सुहेला साध संग विचरत हर मेला जो इच्छै सोई फल पावै साधक संग न बिरथ आ जावै पार ब्रह्म साध हृद वसै नानक उदरै साध सुन रसै साधक संग सुनो हर नाओ साध संग हर के गुण गाओ साधक संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै साधक संग लगै परमीठा साधु कै संग घट घट डीठा साध संग भया क्याकारी साध संगत भई हमारी साधक संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग साध की महिमा वेद न जानै जिता सुनै तिता बखियानै साधक उपमा त्यो गुण ते दूर साधक उपमा रही भरपूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सुदा बेअंत साध की शोभा उचते उची साध की शोभा मूचते मूची साध की शोभा साध बने आई नानक साध प्रभ भेद न पाई सलोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखै किस बिन कोए नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोक जैसे सूर सर्व को शोक ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान जैसे राज रंग कौ लागे तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी कै धीर जेक ज्यों बसदा कु खोदै कु चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक ज्यों पावक का सह स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी कै मन हुए प्रगास जैसे तारु पर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी उचते उच्चान ब्रह्म ज्ञानी उचते उच्चा मने अपना है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे नानक जिन प्रव्याप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल किरी ना तुम रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी को प्रयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी परोपकार कै नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी कै हुए सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कै कै रंग ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता ब्रह्म ज्ञानी का हुए चिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी करै प्रभया ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप
ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बिट भागी पाई, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माही, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय अदाखिर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बकाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विदाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी, श्लोक और तारे जो अंतरना सर्व में पेख है भगवान, निमक निमक ठाकुर नमस्कार है, नानक अपर सगल निस्तार है, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परसु, मन में प्रीत निरंजन दर्शु, पर त्रै रूप न पेख है नेत्र, साध की टहल संसंग हेत, करना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद विख्या पर हरे, मन की बासना मन ते टरे, इंद्री जित पंच दोखते रहत, नान कोट मध्य को ऐसा परसो, वैसनो सोजी सुपर सुपर सन, विष्णु की माया ते हुए पिन, कर्म करत हो वै नि कर्म, तिस वैसनो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बाचे, केवल भगत कीर्तन सगराचे, मन तने अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप जड़ै अवरह नाम जपावै, नानको वैष्णु परम गत पावै, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग, मन ते बिनसै सगला भरम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म, सासन पापा मलक होवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै, भगवंत की टहल करै नितनीत, मन तने अर्पै बिशन प्रीत, हर के चरण हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे, सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है, राम नामा तुम मैं शोध है, राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित का उदय जग जीवे, हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जो नयावे, वेद प्राण सिमरत बूझे मूल, सुख मैं जाने स्थूल, चौवरना को देव उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चो वरना मैं जपै को नाम, जो जो जपै तिसकी गत होए, सासंग पावे जिन कोए, कर कृपांतर उर तारे, पश प्रेत मुक्त पात्र को तारे, सर्व लोक का उखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहु जुगत की तय न पाई है धर्म, नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म, जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, जिसका नाम सतराम दास, आत्म राम तस्नदरी आया, दास दसन तन पाई तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगह परवान, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सूझी परे, सगल संगातम दास, ऐसी जुगत नानक राम दास, प्रभ की आज्ञा तुम हितावै, जीवन मुख सो कहावै, तैसा हर्क तैसा उसोग, सदानंद तै नहीं वियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिखाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो वरता ईसाई जुगत, नानको पुर कहिए जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगल ठाओ, जित जित कर रखे तैसा तिन्नाओ, आपे करन करावन जोग, प्रभाव है सोई फुन होग, पस्तुर आप अंतरंग, लखे न जाहि पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता विना सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पय निहाल, श्लोक उस्थित कर अनेक जनंत न पारावार, नानक रचना प्रभ रची बहुविधनक प्रकार, सुलो अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पय तीर्थवासी, कई कोट बन प्रमय उदासी, कई कोट वेद के श्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान धार है, कई कोट कब का विचार है, कई कोट नवतन नाम त्याव है, नानक करते कंत न पावै, कई कोट पय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अपे गातम निकोर, कई कोट पर दर्भ को हिर है, कई कोट पर दुख न कर है,
कई कोट माया श्रम माही कई कोट प्रदेश परमाही जित जित लावो तित तित लगना नान करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाय कई कोट पात्र बिरख निप जाए कई कोट पवन पानी वैसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट सस्यर सूर्य निकेतर कई कोट देवदान इंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपने सूतार है नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है कई कोट राजस्ताम सातक कई कोट वेद प्राण स्मृत अर्शास्त्र कई कोट कीर्तन सुमंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिर जीवे कई कोट गिरी मेर स्वर्ण जीवे कई कोट जग की नर पिशाच कई कोट भूत प्रे सुकर मृगा सब ते निरे सबू ते दूर नानका अपलिप्त रहा परपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुर्ग निवासी कई कोट जन्म जीव मरह कई कोट भोजन नी फिर है कई कोट बैठत ही खाहे कई कोट काल है थक पाहे कई कोट किए तनवंत कई कोट माया मैं चिंत जय जय भाणा तह तैरा के नानक सब किस प्रभ कह हाथे कई कोट भय बैरागी राम नाम संगति निवलागी कई कोट प्रभ को खोजनते आत्म में पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रभ्यास तिनको मिलो प्रभ विनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको हो आप सुप्रसन्न नानक तेजन सदा धन धन कई कोट काणी अर कांड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट हो अवतार कई जूत किन्नो विस्तार कई बार पसरु पासार सदा सदय के कंकार कई कोट किन्ने बपात प्रभ ते हुए ब्रह्मा इस माता कंत न जाने कोय आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार के दास तिन होवत आत्म प्रगास कई कोट तत् के बेते सदा निहार है को नेत्रे कई कोट नाम रस पी वैमर पैसा सद ही जीव है कई कोट नाम गुण गावे तुमरा सुख सह समावे अपने जन को सास सास सुमारे नानक वे परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभे कह दूसर नाही कोई नानक तिस बलिहार ने जल तल मही अलसो अष्टपदी करण करावन करने जोग जो तिस भावे सोई होग किन में ताप थापन हारा अंत नहीं किस पारा वारा हुक्मे धार धर रहावे हुक्मे उपजे हुक्म समावे हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे अनेक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वडियाई नानक सब मैं रिहा समाई प्रभावै मानु गत पावै प्रभावै तां पात्र त्रावै प्रभावै बिन शास्त्र राखै प्रभावै तां हर गुण भाखै प्रभावै तां पुत तू धारै आप करै अपन विचारै दुहां सिरिआं काप स्वामी खेलै बिकसै अंतर जामी जो पावै सुकार करावै नानक दृष्टि अवर न आवै कहो मानुख ते क्या हुए आवै जो तिस भावै सोई करावै इसके हाथ होई ता सब किछ ले जो तिस भावै सोई करे अनजानत विख्या मैं रचै जे जानत अपना बचै भरमे भूला दै दिस्तावै निमक माए चार कुंठ फिरे आवै कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन नाम मिले किन मैं नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब निवास जा का दृष्ट कछु न आवे तिस तत्काल दा तिस प्रगटावे जा को अपनी करे बख्शीश ता का लिखा न गने जगदीश जियो पिंड सब तिस की रास कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बनता बनाई नानक जीवे दिख बढ़ाई इसका बलना ही सहात कर्ण करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपुरा जियो जो तिस भावे सोई पुन थियो कब हूँ ऊंच नीच में बसे कब हूँ सोग हरक रंग हसे कब हूँ निंद चिंद व्यवहार कब हूँ बकास प्याल कब हूँ बेता ब्रह्म विचार नानका मिला वनहार कब हूँ नृत्य करे बहुपात कब हूँ सोए रहे दिन रात कब हूँ माँ क्रोध विकराल कब हूँ सर्व की हो तरवाल कब हूँ वे बह बड़ राजा कब हूँ पेकारी नीच का साजा कबू अप कीर्त मह आवै कबू भला भला कहावै ज्यों प्रभु राखै तिव ही रहै गुरु प्रसाद नानक सच कहै कबू होए पंडित करे बख्यान कबू मोन धारी लावै ध्यान कबू तट तीर्थ स्नान कबू सिद्ध साधिक मुख ज्ञान कबू कीट हस्त पतंग होए जिया निक जोन भरमै परमिया नाना रूप ज्यों स्वागी दिखावै ज्यों प्रभु भावै तिवै निचावै ज्यों तिस भावै सोई हुए नानक दूजा अवर न कोए
कब हूँ सा संगत त्यो पावे उस स्थान ते बहुर न आवे अंतर हुए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश मंथन नामृत्य करंग सदा बसै पार ब्रह्म कै संग ज्यो जल में जल आए खटाना त्यो ज्योति संग जो समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सद कुर्बान श्लोक सुखी बसै मस्कीनी आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतराज विमान सो नरक पाती होवत स्वान जो जान मैं जो बनवंत सो होवत विष्टा का जंत आपस को करवंत कहा वै जिन मरे बोजोन परमावै धन भूमका जो करे गुमान सु मूर्खंदा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै नानक यहाँ मुक्ता गै सुख पावै धनवंता हुए कर गरबावै तृण समान कर संग न जावै बोल कर मानु कूपर कर आस पल पीतरता का हुए विनाश सब ते आप जाने बलवंत किन मैं हुए जाय पसमंत किसे न बजे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे कुवारी गुर प्रसाद जाका मिटै अभिमान सोजन नानक दर गै परवान कोट कर्म करे अवतारी श्रम पावे सगले बिरथारे अनिक तपस्या करे अहंकार नव सुर फिर अवतार अनिक जतन कर आत्म निद्रवे हर दर गै कह कैसे गवे आपस कहो जो भला कहा वै तिसे भलाई निकट न आवे सर्व किरण जाका मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछ हुए तब इसको सुख नाही कोए जब ए जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ जोन में फिरता जब तारे कुबैरी मीत तब लग नहीं चलना ही चीत जब लग मुँह मगन संगवाए तब लग धर्म राय दे सुजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हो छूटे सहस खटे लकूट तावे तृप्त न आवे माया पाछ पावे अनिक भोग विकिया के करे न तृप्तावे खप खमरे बिना संतोख नहीं कोरा जय सुपन मनोरथ वृथे सबका जय नाम रंग सर्व सुख हुए बडभागी किसे प्राप्त हुए करण करावने आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावन करने हार हिसके हाथ कहा विचार जैसी दृष्ट करे तैसा हुए आपे आपा प्रभ सोए जो किचकी नु सु अपने रंग सब ते दूर सबू कै संग बूझे देखे करे भवे का पहे अनेक मरण बिन सह आवे न जाए नानक सद ही रहा सुमाए आप उपदेश सह समझे आप आपे रचिया सब कै साथ आप की नुवापन विस्तार सब कछ उसका करने हार उसते पिन कहो किछ होए थान तनंतर कै सोए अपने चलता करने हार कौत कर रंग आपार मन मया मन अपने माही नान कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुरु प्रसाद किने वख्यानी सच सच सच सब कीना कोट मदे किने बिरले जीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी श्रवण बखियानी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक संत शरण जो जन परै सो जन उदरन हार संत की निंदा नानका बहुर बौर अवतार अष्टपदी संत कै दुखन आरजा कटै संत कै दुखन जमते नहीं छुटै संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक में पाए संत कै दुखन मत हुए मलीन संत कै दुखन शोभा ते हीन संत के हते को रखे न कोई संत कै दुखन थान भ्रष्ट हुए संत कृपाल कृपा जी करै नानक संत संग निंदक भीतर है संत के दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग जोन लवै संतन कै दुखन सर्प जोन पाए संत कै दुखन त्रिगत जोन करमाए संतन कै दुखन तृष्णा में जलै संत कै दुखन सब को चलै संत कै दुखन ते सब जाए संत कै दुखन नीच नीच आए संत दुखी का था को नाहि नान संत पावै तो पीगत पाहि संत का निंदक मात ताई संत का निंदक टिकन न पाई संत का निंदक महतियारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज देहीन संत का निंदक दुखियार दीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा विजोग संत के निंदा दुख में दोख नानक संत भाव है तो उसका पी हुए मोख संत का दुखी सदा पवित्र संत का दुखी किसै का नहीं मित
संत के दुखी कौ डान लागै, संत के दुखी कौ सब त्यागै, संत का दुखी मां अहंकारी, संत का दुखी सदा विकारी, संत का दुखी जन्म मरे, संत की दुख न सुख ते टरे, संत के दुखी को न ही ठाउ, नानक संत भावै तां लय मिलाए, संत का दुखी अत विष ते टूटे, संत का दुखी किसै काज न पहुंचे, संत के दुखी को ध्यान परमाइए, संत का दुखी उजड़ पाइए, संत का दुखी अंतर ते थोथा, जो सास बिना मृत की लोथा, संत के दुखी की जड़ किचना है, अपन बीजा पे ही खाहे, संत के दुखी कवर न राखन हार, नानक संत पावे तां ले उबार, संत का दुखियों बिल लाए, ज्यों जल बिहुन मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजे, ज्यो पावक इंद्र नहीं त्रापे, संत का दुखी छुट्टे केला, ज्यो बवाड़ तिलखित माही दोहिला, संत का दुखी धर्म ति रहत, संत का दुखी सदमितिया कहत, किरत निंदक का तुर ही पया, नानक ज्योतिष पावे सोई थया, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को तर गै मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाइए, संत का दुखी न मरे न जीवाइए, संत के दुखी की पूजै न आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत का दुख न तृष्ट कोई, जैसा भाव है तैसा कोई, कोई पया किरत न मिटे कोई, नानक जाने सच्चा सोई, सब घट तिसके ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की स्तुति करो दिन रात, तिसे त्याग हो सास विरा, सब कछ वरते तिसका किया, जैसा करे तैसा कोठी, अपना खिलाप करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिष्णु कृपा करे तिसा पर नाम दे बड़ भागी, नानक जन से श्लोक, तज हो से आनप सुरजन हो, सिमर हो हर हर राये, एक आस हर मन रखो, नानक दुख भरम पहु जाय, अष्टपदी मानु की टेक वृथि सब जान, देवन को एक है भगवान, जिसकै दिए रहे अगाए, बहु न तृष्णा लागै आए, मारे राखे कुआ, मानु कै किछु नाहीं हाथ, तिसका हुकुम भू सुख होए, तिसका नाम रखंठपुर होए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन लागै कोए, उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना मृत पियो, सदा सुहेला कर लह जियो, नैनो पेठा कुरका रंग, सा संग बंसर सब संग, चरण चलो मार गोबिंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दर गै नान कूजल मत्था, बटभागी तेजन जग माही, सदा सुधार के गुण गाहे, राम नाम जो करे विचार, से तनवंत गनी संसार, मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एकू एक एक पछाने, तुत कियो सो जी जाने, नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिने निरंजन जानिया, गुर प्रसाद अपने आप सुजै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै, सात संग हर हर जस कहत, सर्व रोग त्यो हर जन रहत, अंदर कीर्तन केवल बख्यान, ग्रस्त में सोई निर्वाण, एक ऊपर जिजन की आसा, तिसकी कटी अजम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक दिसै न लागै दुख, जिसको हर प्रमंच ते आवै, सो संत सोहेला नहीं डुलावै, जिस प्रभु अपना कृपा करै, सो सेवक को किस ते डरै, जैसा सत ऐसा दृष्ट आया, अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुर प्रसाद तब सब बुझिया, जब देखो तब सब किछ मूल, नानक सो सुकम सोय स्थूल, न किछ जन्मै न किछ मरै, अपन चलता पही करे, आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट, आपे आप सगल में आप, अनेक जुगत रच ताप थाप, विनाशी नाहि किछ कांड, धारण धारिहु ब्रह्मांड, अलख पे पुरख प्रताप, आप जपाए ता नानक जाप, जिन प्रभ जाता सो शोभावंत, सगल संसार उदरै तिन मंत, प्रभ के सेवक सगल उदाहरण, प्रभ के सेवक दुख विसारण, आपे मेले कृपाल, गुर का सब जपै निहाल, उनकी सेवा सोई लागै, जिसनु कृपा करह बड़ पागै, नाम जपत पावै विश्राम, नानक तिन पुरखो उत्तम कर्मा, जो किछ करे सुप्रभ कै रंग, सदा सदा बसै हर संग, सह स्वभाव हुए सु हुए, करने हर पछाण सोए, प्रभ का किया जनमीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना, जिस त्यो बुझे दिसमाय समाये, कोई सुख निदान मुँह बन आए, आप सुख आप तीनों मां, नानक प्रभ जन इको जान श्लोक,
सर्व कला भरपूर प्रभ विरता जाननहार, जाके सिमरन उतरी है नानक तिस बलिहार, अष्टपति टूटी काटन हार, गोपाल सर्व जी आया पे प्रतपाल, सगल की चिंता जिस मन वाहे तिस्ते विरता कोई नाहे, रे मन मेरे सदा हर जाप, अविनाशी प्रव्यापे आप, अपन किया कछु न होए, जिसो प्राणी लोचे कोई तिस बिना ही तेरे किछ काम, गत नानक जप एक हर नाम, रूप वंत हो ना ही मोह है, प्रभ की जो सगल कट सो है, तनवंता हो क्या को गर्वै, जा सब किस का दिया दर वै, सूरा जे को कहा वै, प्रभ की कला बिना कहता वै, जे को हुए वह दाता, और किस दिन हार जाने गावा, जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग, नानक सूजन सुधा अरोग, क्यों मंदिर को था मैं थम मनो, त्यों गुर का शब्द मने अस्थम मनो, ज्यो पाखान नाव चढ़ करे, प्राणी गुर चरण लगत निस्तर, ज्यो अंधकार दीपक प्रगास, गुर दर्शन देख मन हुए बिगास, ज्यो माव ध्यान में मार्ग पावे, त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे, तिन संतन की बांचो तूर, नानक की हर लोचा पूर, मन मूर काहे बिललाइये, पूर्व लिखे का लिखिया पाइये, दूर सुख प्रभ देवन हार।

नाम सोचे उदय जो प्रगटाया। निकी कीरी मैं कल राख पसम कर लश्कर कोट राख जिसका सासन काटता पोता कूरा कर देकर हाथ मानस जतन करत बात तिसके करत वृथे जात मारण रख वरण कोई सर्व जिया का रखा सोए काहे सोच करे रे प्राणी जप नान प्रबल कविडानी बारं बार बार प्रभ जपिए पी अमृत मन तंत्र पिए नाम रतंजन गुरमुख पाया तिसके छवरना ही दृष्टाया नाम तन नामो रूप रंग नामो सुकर नाम का संग नाम राज्य जन तृप्तान्य मंत्र नाम मैं नाम समानी उठत बैठ सोवत नाम कौ नानक जन कह सुद काम बोलो जा जे बा दिन रात प्रभ अपने जन किन्नी दात करे भगत आत्म कह चाहे प्रभ अपने शिव रह समाये जो हुआ हो सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पहचाने तिसकी महिमा कौन बखानू तिसका गुण कह के न जानू आठ पैर प्रभ सह हजूरे कहो नानक से जन पूरे मन मेरे तिन की उठ ले मन तन अपना तिन जन देहे जिन जने अपना प्रभु बुझाता सो जन सर्व सुख का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर स्व पाप मिटावे वर स्यान सगली छाड़ तिस जन की तू सेवा लाग आवन जान न हो भी तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक सतपुरख जिन जाने सतगुर तिसका नाओ तिसके संग सिख उदर नानक हर गुण गाओ अस्पदी सतगुर सिखी करै प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै गुर वचने हर नाम उछरै सतगुर सिखे बंधन काटै गुर का सिख विकार ते हटै सतगुर सिखो नाम धन दे गुर का सिख बडभागी हे सतगुर सिखा हलत बल सवारै नानक सतगुर सिखो जी नाल संभारै गुर कै करै सेवक जो रहै गुर की आज्ञा मन में सह आप उसको कर कच न जना वै हर हर नाम हृदय सत्यावै मन बिच सतगुर कह पात इस सेवक के कार्य राज सेवा करत हुए ने कामी तिसको होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिसाव करे नानक सो सेव गुर की मत ले बीस विश्व गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुर जिस हृदय हर नाव अनिक पार गुर को बल जाओ सर्व निदान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म एक अपने कच परम सह सियान लया न जाइये नानक ऐसा गुरु बड़ भागी पाई है सफल दर्शन देखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत पेट संग राम गुण रवि पार ब्रह्म की दर गय गवि सुन कर वचन करन आघानी मन संतो गातम पतियाने पूरा गुर रखे जा का मंत्र अमृत दृष्ट देख हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नान भावय मिलाये जे बाय कुत अनेक सतपुर पूर्ण बबे काहू पोल न पोचित प्राणी अगम गोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदायी ताकि कीमत किन्ह न पाए अनक भगत बंधन नित करे चरण कमल हृदय सिमरै सद बलिहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने हर रस पावै जन कोय अमृत पीवे अमृत सो हुए उस पुर का नाही कदे विनाश जाकै मन प्रगटे गुणता साठ पैर हर का नाम ले सच बदे सेवक को दे मोह माया के संग न ले मन मैरा कै हर हरे अंधकार दीपक प्रगासे नानक परमो दुख तै ते नासे तप्त माय ठाड वरताई अंध भया दुख नाठे भाई जन मरण के मिटे अंदेशे साधु के पूर्ण उपदेशे पौ चुका निरपो हो बसे सगल व्याधमन ते खै नसे जिसका साथिन कृपा तारी सास जपना मुरारी थित पाई चुके भ्रम गवन सुन नानक हर हर जस श्रवण निर्गुण सरगुण पियो ही कला तार जिन सगली मोही अपने चत प्रभा बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिंदु जाना ही कोए सर्व अंतर एक सोए उत्पुत्र व्या रूप रंग भय प्रगा सात कै संग रच

किसकी आस न बिरती जाए। सेवकौ सेवा बन आई, हुकम बूझ परम पद पाई। इसते ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसया निरंकार। बंधन तोर भय निर्वैर, अन दिन पूजह गुर के पैर। यह लोक सुखिए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रव्या पह मेले। साध संग मिल करहु आनंद, गुण गावो प्र परमानंद। राम नाम तत करो विचार, दुर्लभ देह का करो उदार। अमृत वचन हर के गुण गाओ, प्राण तरण का यह सुहाओ। आठ पहर प्रपिख हो नेरा, मिटे ज्ञान बिन से अंधेरा। सुनु उपदेश हृदय बसावो, मन इच्छे नानक फल पावो। हालत पलत दोएले हो सुवार, राम नामन तरुर तार। पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसै तिसाच परिखिया। मंतन नाम जपो लिवलाए, दुख दर्द मन ते पहु जाए। सच व्यापार करहु व्यापारी, दरगह निबह केप तुम्हारी। एका टेक रखो मन माहे, नानक बहुर नाया वह जाहे। किस्ते दूर कहा को जाए, उबरे रख नहार ते आए।

जिस प्रभ राखै तिस नाहीं दुख, नाम जपत मन होत सुख। चिंता जाय मिटै अहंकार, तिस जन को कोय न पहुँचन हार। सिर उपर ठाडा गुरसूरा, नानक ताके कारज पूरा। मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट, दर्शन पेखत उदरत सृष्ट। चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप।

जिस मन बसै सुहूत निहाल, ताकै निकट नयावत काल। अमर भई अमरा पद पाया, साध संग नानक हर त्याया। श्लोक

फिरै चतुर चक, मानई पुर तीन, लोक चौदह है के बिखै, जग जाप ही जेह जाप। आद देव अनाद मूरत, थापेओ सबै जेह थाप, परम रूप पुनीत मूरत, पूर्ण पुरख अपार, सर्व विश्व रचियो स्वयंभव, गणन भंजन हार, कालहीन कला संयुक्त, अकाल पुरख आदेश, धर्म धाम सुभर्म रहत, अभूत अलख अपेश, अंग राग न रंग जा कह, जात पात न नाम, गर्भ गंजन दुष्ट भंजन, मुक्त दायक काम, आप रूप अमीक अन उसत, एक पुरख अवतूत, गर्भ गंजन सर्व भंजन, आद रूप असूत, अंगहीन अपंग अनात्म, एक पुरख अपार, सर्व लायक सर्व कायक, सर्व को प्राप्त पार, सर्वगंता सर्वहंता, सर्वते अनपेख, सर्वशास्त्र न जानही जेह रूप रंग अर रेख, परम वेद पुराण जा कह नेत भाकत नित, कोट सिमरत पुराण शास्त्र, न आवही वह चित, मधुभार छंद त्व प्रसाद, गुणगन उदार महिमा अपार, आसन अपंग उपमा अनंग, अनुभव प्रकाश निस दिन अनाश, आजान बाहु शाहान शाह, राजान राज पहनान पान, देवान देव उपमा महान, इंद्रान इंद्र बालान बाल, रंकान रंक कालान काल, अनपूत अंग आपा अपंग, गतमित अपार, गुणगन उदार मुनगन प्रणाम, निर्भय निकाम, अत दूत प्रचंड, मित गत अखंड, आलस्य कर्म अदृश्य धर्म, सर्वा प्रणाढ़ अंडंड बाढ़ चाचरी छंद त्वा प्रसाद, गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे, हरियं करियं निरनामे अकामे, कुजंग प्रयात छंद, चत्र चक्र करता चत्र चक्र हरता, चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने, चत्र चक्र वारती चत्र चक्र पारती, चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले, चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे, चत्र चक्र माने चत्र चक्र दाने, चाचरी छंद, न सत्र न मित्र न परम न पित्र न कर्म न काय, अजन्म अजाय, न चित्र न मित्र परे है, पवित्र प्रतिशय अधिशय अदृशय अकृशय, भगवती छंद त्व प्रसाद कथते, के अशेज दिस के अभिज पिस, के अगंज करम के अपंज भरम, के अभिज लोक के आदित सुक, के आवतूत वर्ण है के बेभूत करण है, के राजन प्रभा है के धर्म तुजा है, के आशोक वर्ण है के सर्वा अपर्ण है, के जगतं कृति है के शत्रं क्षत्रि है, के ब्रह्मं स्वरूपे के अनुपौ अनुप, के आद अदेव है के आप अपेव है, के चित्रं बहिने के एक अधीने, के रोजी रजा कह रही मेरे हक है, के पाक बेअब है के गैबुल गैब है, के अकबुल गुनाह है के शाहन शाह है, के कारण कुनेंद है के रोजी दहेंद है, के राज कर रहीम है के कर्मं करीम है, के सर्वं कली है के सर्वं दली है, के सर्वत्र माने है के सर्वत्र दाने है, के सर्वत्र गौन है के सर्वत्र पौन है, के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेशा है, के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है, के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने, के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो, के सर्वत्र देशा है के सर्वत्र पेशा है, के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है, के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता, के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है, के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पुख है, के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है, के सर्वत्र देशा है के सर्वत्र पेशा है, के सर्वत्र मान्य है सदैवं प्रधान है, के सर्वत्र जाप्या है के सर्वत्र थाप्या है, के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है, के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है, के सर्वं कली में के परमं फही में, के आकल अलम है के साहिब कलम है, के हुसनल वजू है तमामल रजू है, हमें सुल सलाम है सलीखत मुदाम है, गनीमल सिकस्त है ग्रीबुल परसत है, बिलंदल मकान है जमीनल जमान है, तमीजु तमाम है रजूअल निधान है, हरिफल हजीम है रजायक यकीन है, अनेकुल तरंग हैं अभेद हैं अपंग हैं, अजीजुल निवाज हैं गनीमुल खेराज हैं, निरुक्त स्वरूप हैं त्रिमुक्त बेपूत हैं, प्रभुगत प्रभा हैं सुजुगत सुदा हैं,
सदैवं स्वरूप हैं, अपेदी अनूप हैं, समस्त उपराज हैं, सदा सर्वसाज हैं, समस्त सलाम हैं, सदैव अकाम हैं, निर्बाध स्वरूप हैं, अगाध हैं, अनूप हैं, ओं आद रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबादे अगंजे अगादे शुभं सर्वभागे सुसर्वा अनुरागे त्रिभुगत स्वरूप हैं, अशेज हैं, अशूत हैं, किनर्कं प्रणाश हैं, कृतियुल प्रवास हैं, निरुक्त प्रभा हैं, सदैवं सदा हैं, विभुगत स्वरूप हैं, परजुगत अनूप हैं, निरुक्त सदा हैं, विभुगत प्रभा हैं, अनुक्त स्वरूप हैं, परजुगत अनूप हैं, चाचरी छंद अपांग हैं, अनांग हैं, अपेक हैं, अलेख हैं, अपर्म हैं, अकर्म हैं, अनाद हैं, जुगाद हैं, अजय हैं, अभय हैं, अपूत हैं, अतूत हैं, अनाश हैं, उदास हैं, अतंध हैं, अबंध हैं, अपगत हैं, विरक्त हैं, अनाश हैं, प्रकाश हैं, निचिंत हैं, सुनिंत हैं, अलेख हैं, अदिख हैं, अलेख हैं, अपेक हैं, अटा हैं, अगाह हैं, असंभ हैं, अगम्भ हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अनित हैं, सुनित हैं, अजात हैं, अजाद हैं, चरपट शांत त्वा प्रसाद, सर्वं हंता, सर्वं गंता, सर्वं ख्याता, सर्वं ज्ञाता, सर्वं हर्ता, सर्वं कर्ता, सर्वं प्राणं, सर्वं प्राणं, सर्वं कर्मं, सर्वं धर्मं, सर्वं जीवता, सर्वं मुक्ता, रसावल शांत त्वा प्रसाद, नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्रय न पुत्रय न सत्रय न मित्रय न पाताय न माताय न जाताय न पाताय निरसाकं सरीक हैं अमितो अमीक हैं सदैवं प्रभा हैं अजय हैं अजा हैं भगवती शांत त्वा प्रसाद के जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं हमेशुल सलाम हैं समस्तुल कलाम हैं के साहिब दिमाग हैं के हुसनल चराग हैं के अकामल करीम हैं के राज कर रहीम हैं के रोजी दहेंद हैं के राज कर रहेंद हैं क्रीमल कमाल हैं के हुसनल जमाल हैं गनीमल खिराज हैं ग्रीबुल निवाज हैं हरीफुल शिकन हैं हैरासुल फिकन हैं कलंकं प्रणास हैं समस्तुल निवास हैं अगंजुल गनीम हैं रजाइक रहीम हैं समस्तुल जुबा हैं के साहिब केरा हैं के नरकं प्रणास हैं बहसुल निवास हैं के सर्वुल गवन हैं हमेशुल रवन हैं तमामुल तमीज हैं समस्तुल अजीज हैं परं परम ईश हैं समस्तुल अदीस हैं अदेशुल अलेख हैं हमेशुल अपेक हैं जमीनल जमा हैं अमीकुल इमा हैं करीमुल कमाल हैं के जोरत जमाल हैं के अचलम प्रकाश हैं के अमितो सुबास हैं के अजब स्वरूप हैं के अमितो विभूत हैं के अमितो पसा हैं के आतम प्रभा हैं के अचलम अनंग हैं के अमितो अपंग हैं मधुभार शांत त्वा प्रसाद मुन मन प्रणाम गुणगन मुदाम अर बर अगंज हर नर प्रपंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम आनशेज अंग आसन अपंग उपमा अपार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनाश त्रित तर तुरास आजान बाहो एक सदाहो ओंकार आद कथनीय नाद खलखंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनशे जुगात आजिज न बात अनचंज गात अनरंज बात अनटट भंडार अनटट अपार अडीठ कर्म अतटीठ कर्म अनब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना शांत त्वा प्रसाद करुणालय है अरकाल्य है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उबारण है त्रित के करण है जाग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्वपाश है सर्वनाश्य है करुणाकर है विश्वम्भर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है पारते पर है करुणाकर है अजपा जप है अथपाथप है अकृताकृत है अमृतामृत है अमृतामृत है करुणाकृत है अकृताकृत है धरणीकृत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजपाकृत है अमृतामृत है नरनायक है खालकायक है
विश्वम्बर हैं, करुणालय हैं, निरपनायक हैं, सर्व पायक हैं, भव भंजन हैं, आर्य गंजन हैं, रेप तापन हैं, जाप जापन हैं, अकलंकृत हैं, सर्वाकृत हैं, कर्ता कर हैं, हरता हर हैं, परमात्म हैं, सर्वात्म हैं, आत्म बस हैं, जस के जस हैं, भुजंग प्रयात छंद। नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राजसं तामसं सात रूपे, नमो परम तत्त्वं अतत्त्वं स्वरूपे, नमो योग योगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो ज्युत ज्युते, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे, अनादं विभूते, कलंकार रूपे, अलंकार अलंके, नमो आस आसे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे, अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकाले, अनंगी अकामे, एक अश्री शांद, अजय अलय अपय अभय अभू अजू अनास आकाश, अगंज अपंज अलख अपख, अकाल दयाल अलेख अपेख, अनाम अकाम अगा अटहा, अनाथे प्रमाथे अजूनी अमोनी, न रागे न रंगे, न रूपे न रेखे, अकर्मं अपरमं अगंजे अलेखे, भुजंग प्रयात छंद। नमस्तुल प्रणामे, समस्तुल प्रणासे, अगंजुल अनामे, समस्तुल निवासे, नृकामं विभूते, समस्तुल स्वरूपे, कुकर्मं प्रणासी, सुकर्मं विभूते, सदा सच्चिदानंद, सतरं प्रणासी, क्रीमुल्क निंदा, समस्तुल निवासी, अजायब विभूते, गजायब गनिमे, हरियं करियं क्रीमुल रहिमे, चत्र चक्रवर्ती, चत्र चक्र पुगते, स्वयं भव शुभं सर्वदा सर्वजुगते, दुकालं प्रणासी, दयालं स्वरूपे, सदा अंग संगे, अपंगं विभूते, चत्र चक्रवर्ती, चत्र चक्र पुगते, स्वयं भव शुभं सर्वदा सर्वजुगते, दुकालं प्रणासी, दयालं स्वरूपे, सदा अंग संगे, अपंगं विभूते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं त्व प्रसाद सवैये, श्रावक सुध समूह सिधान के, देख फिर ओ कार जोग जाति के, सूर सुरार्दन सुध सुधा देख, संत समूह अनेक मति के, सारे ही देश को देख रहे हो मत, को न देखियत प्राणपति के, श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते, एक रति बिन एक रति के, माते मतंग जरे जर संग, अनूप उतंग सुरंग, सुवारे कोट तुरंग, कुरंग से कूदत पौन के, गौन कौ जात निवारे, भारी पूजान के भूप, भली बेद न्यावत शीस, न जात बिचारे, इते पय तो कहा पय भूपत, अंत कौ नांगे ही पाए पधारे, जीत फिरै सब देश दिसान को, बांजत ढोल मृदंग नगारे, गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर, हिंसत ही हाय राज हजारे, भूत पविख पवान के भूपत, कौन गन नहीं जात बिचारे, श्री पात श्री भगवान भजे बिन, अंत कौ अंत के ताम सिधारे, तीर्थ नान दया दम दान, सो संयम नेम अनेक बसेख है, वेद पुराण कतेब कुरान, जमीन जमान सबान के पेख है, पौन आहार जति जात तार, सब सो विचार हजार प्रदिख है, श्री भगवान भजे बेन भूपत, एक रति बेन एक ना लेख है, सुध सिपाह दुरंत दुबाह, सो साज सनाह दुर्जान दलेंगे, भारी गुमान परे मन में, कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे, तोर अरीर मरूर मवासन, माते मतंगन मान मलेंगे, श्री पत श्री भगवान कृपा बिन, त्याग जहान निदान चलेंगे, वीर अपार बड़े बरियार, अब चारा सार की तार पशैया, तोरत देश मलिंद मवासन, माते गजान के मान मलैया, गाड़े गड़ान को तोड़न हार, सो बात नहीं चकचार लवैया, साहिब श्री सबको सिर नायक, जाचिक अनेक सो एक देवैया, दानव देव फनिंद निसाचर, भूत पविख पवान जपेंगे,
जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे। पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे। साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्र सबै अवलोक चपेंगे। मानव इंद्र गजेंद्र नरातप जौन त्रिलोक को राज करेंगे। कोट स्नान गजादित दान अनेक सुअम्बर साज भरेंगे। ब्रह्म महेश्वर बिशन सचिपत अंत फसे जम फास परेंगे। जे नर श्रीपत के प्रस है पागो ते नर फेर न देह तरेंगे। कहाँ पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो। नहत फिरियो लिए सात समुन्द्रन लोक गयो परलोक गवायो। बास कियो बिख्यान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सुबह सुबितायो। साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। काहू लै पाहन पूज धरियो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो। काहू लख्यो हर अवाची दिशा मैं काहू पशाक उसी सिनेवायो। को बुतान को पूजत है पाश को मेरे तान को पूजन तायो। कूर के रिया उर्जियो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो। कूर क्रिया उर्जियो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कब्यो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रत पारा। हमरे दुष्ट सबै तुम का वहो आप हाथ दे मुहे बचा वहो। सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करियै सब बैरन को आज संग्रियै। पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें शाड कोई अवर ना त्याऊं जो बार चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दाय मुझे उबरे है मरण काल का त्रास नेवरे है। पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुज जो करे हो रक्षा। राख लेहो मोहे रखन हारे साहिब संत सहाये प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पूरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी सेव कियो बेदराज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो देव दायत जशन उपजायो। आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो सत्रन को पालमो बाद कियो। घाट घाट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै घाट घाट के पट पट की जानै। जब उद करख करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा। जब अकर्ख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तार आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निरलंभ आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा जाको पेवना पावत बेदा। ताको कर बाहन अनुमानत महामूड काश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न दोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा।
एकै रूप अनूप सरूपा रंक भयो राव कही पूपा अंडज जे रज से तज कीने ओत भुज खान बहुर राज दीने कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट भयो शंकर इकैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जीते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुज तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवा मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो काल को एक बार त्याय है ताके काल निकट न आय है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत काला कृपा दृष्ट तन जाहे ने हर हो ताके ताप तनक मोहरे हो रेत सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्वाय सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांस ते ताहे उबारा जिन नार नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दुख ते रहा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दै लिहो उबारी सर्व ठाउर मोहो सहाई दुष्ट दुख ते लिहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता किले बेखो सकल देह को हरता दुष्ट दुखियन को शाया करता श्री अस तुझ जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बाशत फल पावै सोई दुख न तिसै व्यापत कोई अड़िल सुने गूंग जो जाहे सुरस ना पावई सुने मूड चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पाओ निकट ना तिन नर के रहै हो जो जाकी एक बार चौपाई को कहै चौपाई संबत सत्रह सहस पणि जय अर्ध सहस फोन तीन तिह जय भाद्रव सुधी अष्टमी रविवारा तीरस तद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना माने ओ सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक ना जाने ओ श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहे ओ सब तो हे बखाने ओ दोरा सगल द्वार कौ शाट कै कहो तुहारो द्वार बाहे कहे की लाज अस गोविंद दास तुहार सगल द्वार कौ शाट कै कहो तुहारो द्वार बाहे कहे की लाज अस गोविंद दास तुहार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वादाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां शब्द उता गावह हरि केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरेया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा घर ता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहाओ जिस दियां ए वडे आईया
कहे नानक सुनहु संतोहु शब्द तरहु प्यारो सचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित कर सुपागह कर सुपागह शब्द वाजे कलाजित कर तारिया पंच दूत तुद वासु कीते काल कंटु कुमारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कहे नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे। साची लिवै बिन देह निमाणी लिवै बाजा हो क्या करे वेचारिया तुद बाज समरथ कोय नाही कृपा कर बनवारिया एस नाउ होर थाउ नाही शब्द लाग सवारिया कहे नानक लिवै बाजा हो क्या करे वेचारिया। आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया कर किरपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदर हो जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सचै सवारिया कहे नानक एहो आनंद है आनंद गुर ते जानिया। बाबा जिस तू दे सोई जन पावै पावै ता सो जन दे जिसनो होर क्या करह वेचारिया एक भरम भूले फिरै दह देसो एक नाम लाग सवारिया गुरप्रसादी मन भया निर्मल जिना भाणा पावै कहे नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावै। आवो हो संत प्यारे हो अकथ की करह कहानी अकथ केरी कित द्वारे पाईऐ तन मन तन सब सौंप गुर कौ हुक्म मनै पाईऐ हुक्म मने हो गुरु केरा गावो सची बाणी कहे नानक सुन हो संतो हो कथे हो अकथ कहानी। ए मन चंचला चतुराई किने ना पाया चतुराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया एह माया मोहनी जिन एत भरम भुलाया माया त मोहनी तिने कीती जिन ठगौली पाईया कुरबान कीता तिसै बिटहो जिन मोह मीठा लाया कहे नानक मन चंचल चतुराई किने ना पाया। ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले एहो कुटंब तू जे देखदा चलै नाही तेरै नाले साथ तेरा चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाईऐ ऐसा काम मूले ना कीचै जित अंत पछोताईऐ सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरा नाले कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया अंतो ना पाया किनै तेरा अपना आप तू जानहे जी जंत सब खेल तेरा क्या को आख वखाण आखै ता वेखै सब तू है जिन जगत उपाया कहे नानक तू सदा अगम है तेरा अंत ना पाया। सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया जी जंत सब तुद उपाए एक वेख पर सुन आया लब लोभ अहंकार चुका सतगुरु भला पाया कहे नानक जिसनु आप तुठा तिने अमृत गुर ते पाया। भगतां की चाला निराली भगतां केरी बिखम मार्ग चलना लब लोभ अहंकार तज कृष्णा बहुत नाही बोलना। सतगुरु सुनाया एहो तिन कै मन वसया जिन धुरों लिखिया आया एक फिरे कनेरे करै गल्लां गल्ले किने ना पाया कहे नानक शब्द सोहेला सतगुरु सुनाया।
ਭਗਤ ਹੋਏ ਸੇਜਨਾ ਜਿਨੀ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਭਗਤ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ, ਪਵਿੱਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੁਟੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਉ, ਪਵਿੱਤ ਸੰਗਤ ਸੁਭਾਈਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸੁਣਦੇ ਪਵਿੱਤ, ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਮਨ ਵਸਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਵਿਣ ਸਹਿਜੇ ਸਹਸਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਹਿ ਜਾਏ ਸਹਸਾ ਕਿਤੈ ਸੰਜਮ, ਰਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਸਹਸੈ ਜਿਉ ਮਲੀਨ ਹੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ, ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ, ਹਰ ਸਿਉ ਰਹਾਉ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ, ਇਹ ਸਹਸਾ ਵਿਜਾਏ, ਜੀਉ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਉ ਤਾਂ ਮੈਲੇ, ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਜੂਏ ਹਾਰਿਆ, ਇਹ ਤਿਸ਼ਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲਗਾ, ਮਰਨ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਵੇਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਣੈ ਨਾਹੀ, ਫਿਰਹਿ ਜਿਉ ਬੇਤਾਲਿਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੱਚ ਤਜਿਆ, ਕੂੜੇ ਲਾਗੇ ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਜੂਏ ਹਾਰਿਆ, ਜੀਉ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਉ ਨਿਰਮਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਣੀ ਕਮਾਣੀ, ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੈ ਨਾਹੀ, ਮਨਸਾ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ, ਜਨ ਮਰਤਨ ਜਿਨੇ ਖੱਟਿਆ, ਭਲੇ ਸੇਵਣ ਜਾਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ, ਸਦਾ ਰਹਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲੇ, ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੈ, ਹੋਵੈ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ, ਜੀਉ ਰਹਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਏ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸੰਭਾਲੇ ਆਪ ਛੱਡ, ਸਦਾ ਰਹਿ ਪਰਣੈ ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਵੇ ਮੁਖ ਹੋਵੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਪਾਵੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਰ ਥੈ ਕੋਈ, ਪੁੱਛੋ ਬਵੇਕੀਆਂ ਜਾਏ, ਅਨੇਕ ਜੁਨੀ ਭਰਮ ਆਵੈ, ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਰਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ, ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਏ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ, ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੈ, ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ, ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਰੰਗ, ਜਪੇ ਹੋ ਸਾਰਿੰਗ ਪਾਣੀ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵਹੋ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਜੋ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਕਹਿਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ, ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਕਰਹਿ ਰਸਨਾ, ਕਹਿਆ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਚਿਤ ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰ ਲਇਆ ਮਾਇਆ, ਬੋਲਣ ਪਏ ਰਵਾਣੀ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਜੋ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰੇ ਜਿਤ ਜੜਾਓ, ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਜਿਤ ਮਨ ਲਾਗਾ ਇਹੋ ਆਸਮਾਓ, ਸ਼ਬਦ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚੇ ਲਾਇਆ ਭਾਓ, ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਆਪੇ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇ ਬੁਝਾਏ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰਾ ਜਿਤ ਜੜਾਓ, ਸੇਵ ਸਕਤ ਆਪ ਉਪਾਏ ਕਹਿ, ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ, ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ ਆਪ ਵੇਖੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਏ, ਤੋੜੇ ਬੰਧਨ ਹੋਵੈ ਮੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਵੈ ਏਕ ਸਿਉ ਲਿਵਲਾਏ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਪ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਬੁਝਾਏ, ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ, ਤਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ, ਤਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਜੋ, ਤਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ, ਤਿਹ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭ੍ਰਮ ਸੁੱਤਾ, ਸੁਤਿਆ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬੋਲੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਤ ਪਾਏ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੈ, ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ, ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨਹੋਂ ਵਿਸਾਰੀਐ, ਮਨਹੋਂ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰੀਐ ਇਹ ਵਡਦਾਤਾ, ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹ ਪੋਹੇ ਨਾ ਸਕੀ ਜਿਸ ਨਾਓ, ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਵੇ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਆਪੇ ਲਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਡਦਾਤਾ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨਹੋਂ ਵਿਸਾਰੀਐ, ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤਾ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ,
लेव छोड़ की लगी तृष्णा, माया अमर वरताया। ए माया जित हार विसरै, मोह उपजै पाओ दूजा लाया। कहे नानक गुर प्रसादी, जिना लेव लागी तिने विचे माया पाया। हर आप अमुलक है, मुल न पाया जाए, मुल न पाया जाए किसै विट हो रहे लोक विल लाए। ऐसा सतगुर जे मिलै तिसनु सिर सौंपिया विच हो आप जाए। जिस दा जियो तिस मिल रहै, हर वसै मन आए। हर आप अमुलक है, भाग तिना के नानका जिन हर पलै पाए। हर रास मेरी मन बन जारा, हर रास मेरी मन बन जारा, सतगुर ते रास जानी। हर हर नित जपे हो जियो, लाहा खटे हो दिहाड़ी। एहो धन तिना मिलया जिन हर आपे भाणा, कहे नानक हर रास मेरी मन हुआ बन जारा। ए रसना तू आन रास राच रही, तेरी प्यास न जाए, प्यास न जाए होरत किता जिचर हर रस पलै न पाए। हर रस पाए पलै पिए हर रस, बहुड़ न तृष्णा लागै आए। एहो हर रस करमी पाइए, सतगुर मिलै जिस आए। कहे नानक होर आन रस सब विसरे, जा हर वसै मन आए। ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी, ता तू जग मह आया। हर जोत रखी तुद विच, ता तू जग मह आया। हर आपे माता आपे पिता, जिन जियो उपाय जगत दिखाया। गुर प्रसादी बुझिया ता चलत होआ, चलत नदरी आया। कहे नानक सृष्ट का मूल रचिया, जोत राखी ता तू जग मह आया। मन चाओ भया प्रभ आगम सुनया, हर मंगल गाओ सखी गृह मंदर बनया। हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख ना व्यापाए। गुर चरण लागे दिन सभागे, अपना पिर जा पाए। अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो। कह नानक प्रभ आप मिलया, करण कारण जोगो। ए शरीरा मेरिया इस जग में आए, कह क्या तुद कर्म कमाया। के कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग मह आया। जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन न वसाया। गुर प्रसादी हर मन वसया, पूर्व लिखिया पाया। कहे नानक एहो शरीर परवान हुआ, जिन सतगुरु स्यों चित लाया। ए नेत्र हो मेरे हो, हर तुम मैं जोत धरी। हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई। नदरी हर ने हालिया, एहो विस संसार तुम देख दे। एहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। गुर प्रसादी बुझिया, जा वेखा हर एक है, हर बिन अवर न कोई। कहे नानक ए नेत्र अंध से, सतगुर मिलया देव दृष्ट होई। ए सरवण हो मेरे हो, साचै सुनणै नो पठाए, साचै सुनणै नो पठाए। शरीर लाए सुनो सात बाणी, जित सुणे मन तन हरिया होआ। रसना रस सुमाणी, साच अलख वेडाणी, ताकि गत कही न जाए। कहे नानक अमृत नाम सुनो, पवित्र हो वह साचै सुनणे नो पठाए। हर जियो गुफा अंदर रख कै, वाजा पवन वजाया। वजाया वाजा पौन, नौ द्वारे प्रगट किए। दसवां गुप्त रखाया, गुरुद्वारे लाए भावने। इक ना दसवां द्वार दिखाया, तह अनेक रूप नाउ नावने दो, तिसदा अंत न जाई पाया। कहे नानक हर प्यारा, जियो गुफा अंदर रख कै, वाजा पवन वजाया। इहो साचा सोहेला, साचै कर गावहो। गावो ता सोहेला कर साचै, जिथे सदा सच ते आवहे। सचो ते आवै जा तुद पावै, गुरमुख जिना बुझावहे। इहो सच सबना का खसम है, जिस

वडभागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुने।

श्री वाहिगुरु। तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास, ताको बिघन को लागे जाकी प्रभ आगे अरदास। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जुन हर को बिंदनाओ सिमरओ श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे कर नौ निद आवै ताए, सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज, सब थाई होवो जी सहाय। दसा ही पातशाहियां दी जागदी जोत, बाणी के बोहित चावर ताकत शत्र दे मालक सतगुरु। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु। पंजा प्यारियां चौहान साहिब जादियां, चालियां मुकतियां, हठियां जपियां तपियां, जिन्हां ने तेरा नाम जपिया। वंड छकिया देख चलाई तेग वाही, देख के अणडिठ कीता तिना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटवाए, खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तन आरियां नाल चिराए, गुरुद्वारियां दी सेवा हित कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिखी सिदक केसां सुआसां संग निभाया, तिना सिंघां सिंघणियां पुचंगी बच्चियां दी नाम दी कमाई दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु नाम चित आवै जी। नाम चित आवन का सदका सरब सुख होवै, जहां जहां गुरु खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज, पंथ की जीत श्री साहेब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु। सिखा नू सिखी दान, केस दान, रहत दान, बबेक दान, विसा दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान। श्री अमृतसर जी दे पवित्र दर्शनी इशनान, चौंकियां झंडे बूंगे जुगो जुग अटल, धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु। सिखां दा मन नीवा मत उची, मत पत दे राखे आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जियो। श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हां तों सिख पंथ नूं विछोड़िया गया, तिन्हां दे खुले दर्शन दी दर अते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो जी। हे निमाणियां दे माण सतगुरु, नेताणियां दे ताण, ने ओटियां दी ओट, ने आसरियां दे आसरा, सच्चे पिता धन सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, धन सतगुरु साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। दसां ही पातशाहियां दी जागदी जोत, हाजरा हजूर सर्ब कलां भरपूर, गुरगद्दी ते विराजमान धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी। आप जिया का कोटान कोट शुक्र है पातशाह जी, अमृत वेले तो खुले दर्शन दीदार बख्श रहे हो। सतगुरु जी आप जिया की पावन टहल सेवा करद हो बेअंत भुलां की खिमा कर देनी, अगे तो समत बख्शिश करनी सतगुरु जी। आप जिया के पावन सदान सिख गुरुद्वारा सन होजे विखे महाराज जी अमृत वेले दे दीवान सजाए गए। सजे हुए दीवाना दे विच संपूर्ण श्री सुखमणी साहब जी के पाठ होए, उपरांत नितनेम दियां पंजां बाणियां दे पाठ होए। सतगुरु जी बाणी पढ़दियां सुनदियां सेवा करदियां विचरदियां होईयां बेअंत भुलां दी खिमा कर देनी, बाणी सोध के सचखंड दर प्रवान कर लैणी, बाणी दा भाव समुची संगत दे हिरदियां ते वसाउणा, बाणी अनुसार जीवन बख्शिश करना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो बचाउणा, सिखी सिदक केसां सुआसां संग निभाउणा पातशाह जी।
ਦਾਰਾਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ, ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਖੇ ਲਾਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵੇਲੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਪਾਉਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਦਾਰਾਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਰਜਣਾ। ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਸਦਕਾ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਚਾਰ ਪੈਰ ਰਹਿਣ ਸੁੱਖ ਦੀ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਇਆ ਚਾਰ ਪੈਰ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਾਉਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਲਾਓ ਜੀ। ਭੋਗ ਲੱਗਾ ਸ਼ੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਸਨੀ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਛਕੇ ਸੋ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ, ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਚੂਰ ਕਰਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।

भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिर जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद।

0: तीर्थ भव्या ते तो लव्या बहु पेख किया देही दुख जिया सहवे जिया अपना किया अन्ना खाया साध गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया वस्त्र न पहरा निस्कहरे मोन में गुता क्यों जागे गुरबिन सूता पग उपेताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिर छाई पाई मूर्ख अंधे पद गवाई मेरे नाम किस्ताय न पाई रहे बेबाणी मणि मसाणी अंदना जाने फिर पछताणी सतगुर पेटे सो सुख पाए हर का नाम मन बसाए नारक नर करे सो पाए आ संदेशे तेहने केवल आओ मैं शब्द जलाए
1: बड़ी भगत तेरे मन भाव दे दसो हम कीर्त गाम दे नानक मां बाहरे दा ढो न लहने धाम दे एक मूला बुझना अपना हुदा आप गणाए दे हाँ ढाडी का नी

पड़े भगन कर सन मारिये जिह काले करना दे ना उपचारी है ऐसी कला न खेड़ी जिदर के गया हारी है पड़े तुम्या विचार के विचारी है मुंह चले सो के मारिये मुंह चले सो के मारिये।

कहने कोई न जाने तुमरायांत ऊंचे ते ऊंचा भगवान सगल समगिरी तुमर सुतर तारी तुम ते हो ऐसो आगे का

सत्संगत जी। बोलो जी वाहेगुरु वाहेगुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी साहेब आज गोरी पाचे दसवीं प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लई त्याय प्रियंकत गुरते अमरदास रामदास से सहाय अर्जुन हर गोविंद सिमर श्री हर राय श्री हर कृष्ण जय तो सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर्ण उन दयाला चाहे सब थाई हो सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हो सहाय दसा पातशी दे पुत्र आत्मा छू साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब ने पारदार दाते अंतर के घर से बोलो जी आहे गरीब नवाज आप जी दे पांच प्यारे चार साहबजादे चाली बुद्ध हटियां जपियां तपी जिन्हें नाम जपया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख डेढ़ कीता तेना प्यारियां सत्यारियां की कमाई दाते अंतर के बोलो जी वाहेगुरु जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्म है शहीद उत्ते बंद बंद कटवाए खोपरियां लवाईया चरखियां ते चढ़े आरे चढ़ाए गए गुरुद्वारे सेवा ते कुर्बानियां कीतियां धर्म ने आ रहा सी किसे ते केसां सतसंग लवाए ते नानक भाई दा ध्यान करके बोलो जी वाहेगुरु पंजां तख्तां दा गुरुद्वारे दा ध्यान करके बोलो जी वाहेगुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे नाम चेता है जित आमण का सदका सर्व सुख हो जहां जहां गुरु खालसा साहब आज देखते की फतेह बिलकी पै पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोलवाले बोलो जी वाहे गुरु। सिखा नु सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान साह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब के दर्शन स्नान क्योंकि चंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म क्या जयकार बोलो जी वाहेगुरु। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत के राखे आप वाहेगुरु। गुरु की वाह पंथ सदा से आए दता जियो गुरुद्वारा निरकाना साहब पंजा साहब फिर गुरुद्वारे गुरु तो आम जिन्हों तो आप दे पंथ नूं छोड़िया गया है उन्हें देखो दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान अपने खालसा जी बख्शो इन्हें वटियां दी ओट गुरु न्यासरियां दे आसरे गुरु धन धन गुरु दता जियो दोए कर जोर करो अरदास भावे ताने रास। हे गिरिवाज जी आपके चरण कामना अरदास ने आप बख्श की है अमृत वेले प्रकाश बन गए संगत दर्शन दर्द के हक दता जियो मेहनत बाणियों के पाठ आज रागी सिंह ने आपके चरण यात्रा की वार्ड कीर्तन की विद्वान वीर ने अज के हुक्मनामे की कथाचार की कृपा करो होइया भुल चुका की माफी बख्शो पढ़े हुए बाणी सोच के सचखंड प्रवान करो बाणी का भाव सारिया संगत प्राणिक वार्ता करो जी अगर तो शोध पितर बाणी टाणी बल बुद्धि बख्शिश करो भी महाराज इस खुशी में आप दिन बख्शिया दातों में पितर कड़ाप शादी देगा तैयार कर हाल दतार आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद सात संगत की रसना लायक होवे जो जी सके स्वास स्वास आप जी आप पितर नाम च बख्शिश करो दतार दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखों का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शिश करो जी ज आप जी मखियां दातों जो नगर चुट सेवाई प्रवान करनी आपके चरणा सेवा कर रहे सारे प्यारिया सिंगा सिंगणियों तंदुरुस्ती बख्शो चाटकला बख्शो तो सदा ही इसे तरह अपने चरणा सेवा की भावना में कृपालता करो गरीब नवाज कृपा करो अमृत वेले तो लैके दाते आई सब संगत हाजिर दर प्रवान

मिल शब्द गुरु प्रभ नाहा, हाँ तुझ बाचो खरी उड़ीनिया, ज्यो जल बिन मीन मराहा। वडभागी हर त्याया, जन नानक नाम सुमाहा, मन दह दिस चल चल परमिया, मन मुख परम पुलाया। नित आसा मन चितवै, मन तृष्णा भुख लगाया, अन्नता धन धर दबिया, फिर

मुख उबरे गुर शब्दी हो मैं छुट्टिया वस आने हो वे जन इस मन का मन बासे नित मन बासे ज्यो नित पौदया दुख रहन वे रिहानिया नित आसा आ

अनहद शब्द सुहावा, सच मंगल हर जस गावा, गुण गाए हर हर दुख नासे, रहस उपज

नाम परम पद पाया आप मिटाया हर पूरन कृपा धारी सफल जन्म हुआ भौ भागा।

सर्व सुखातिश ही बन आए जो प्रभ अपना करया। कर मह नवनिध भरे भंडारा राम नाम रंग लागा नानक जन प्रभ कदे न विसरे पूरन जाके भागा छाया।

हर प्रभ पुर माया मिटी बलाया, साच धर्म पुन फलिया। सो प्रभ अपना सदा त्याई, सोवत बैसत खलिया, गुण निदान सो

वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान्यो गुरु रूप सासंग जी, आप जी वडभागी हो, तनता योग हो, जो गुरु दरबार विच बैठ के, घरां विच बैठ के प्यार सहित, श्रद्धा भावना सहित सतगुरां दी अमृत बाणी दे श्री सहज पाठ सरवण कर रहे सी, नाल कर रहे सी। सतगुरु जी कृपा करन, जितनिया भी संगतां ने हाजरियां भरिया हन, सतगुरु जी सभना की हाजरी दर प्रवान करन, दरों घरों चढ़दियां कला बख्शिश करके नवाजन। अगाध बोध बाणी पढ़दियां बेअंत बेअंत भुल्लां हो गईयां हन, आप संगत कृपालू सतगुरु जी बख्शन योग ने, भुला ना चितार दे प्यार सत फतेह गजाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

पावन जुरी विच दोने बचे सुभायमान सतगुरु जी हजूरी विच सच चुकी हैं जी। सो परिवार नूं हुक्म होया सी कि जा तू मेरे वल है ता क्या मां शंदा तू सब कुछ मैनूं सौंपिया जा तेरा बंदा

सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन पवित्र मुकदस तिनगी गोद आनंद मान है गुरु प्रसाद संगत जी हो सतगुरु जी ने अपार बख्शिश रहमत कृपा की है। आज संध्या वेले दे इन विशेष गुरमत समागम आप जी की गुरबाणी कीर्तन रही सेवा करने का सुभाग आप जी के दर्शन करने का सतगुरु जी ने एक अवसर बख्शिश किया है। बाणी का कथन है, ऐसा कीर्तन कर मन मेरे इहां उहां जो काम तेरे। हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे तिस जन दुख निकट नहीं आवे। यह कीर्तन की महानता, यह कीर्तन की वड्याई। जिहड़े सचमुच अंदरों गुरु शब्द दे नाल जुड़ के गुरु नानक दे उस महान बख्शिश कीते कीर्तन का आनंद माणदे हन, वो कीर्तन जिहड़ा तुसी रोज सचखंड श्री हरिमंदर साहब श्री दरबार साहब जी तो दूर बैठे सरवण करते हो। मैं ये हर थां बेनती करदा कि भावें गुरु रामदास जी नूं प्यार करने वाला, उस दर नूं प्यार करने वाला शरीरक तौर ते हजारां किलोमीटर दूर बैठा होवे, पर जदों उस दर दे दर्शन हुंदे हन, उत्थों प्रसारित हुंदे कीर्तन दी धुनी कन्नां विच पैंदी है, उस इं नहीं लगता कि असी दूर बैठे कीर्तन सुन रहे हैं। उस इं लगता है कि धन गुरु रामदास पिता की गोद श्री दरबार साहब विखे बैठे हुए हैं। यह बख्शिश है उस दर की, उस घर की। डिठे सबे थाव नहीं तुद जिहा, बदो पुरख बदाते तातु सोहिया। वसदी सगन अपार अनूप रामदास सुर, हर हां नानक कस मल जाए नाय रामदास सर। तन तन रामदास गुर जिन सिर यात्री सवारे। आओ सारे ने रल के कीर्तन करना है। जिथे तुसी कन्ना दे नाल बाणी नूं सरवण करना है, उत्थे नाल कोशिश करनी है साडी रचना दी भी हाजरी लगे, साडी रचना भी निर्मल ते सुची होई गुरु दे शब्द नाल, उस वाहिगुरु दे सिमरन दे नाल। इसलिए सारे रल के आपां कीर्तन करिए। अगला शब्द आपकी सरवण करोगे, मेरा वैद गुरु गोबिंदा, हर हर नाम औखद मुख देवे काटे जम की फंदा। करो कृपा सारे।